0: shopping center and boost economic growth. And the weather forecast for tonight and tomorrow. Cloudy with occasional showers and squally thunderstorms. Showers will be heavy at times. Temperatures will range between 26 and 29 degrees tomorrow. Moderate to fresh southwesterly winds, occasionally strong offshore and on high ground at first. Right now at the observatory, it is 29 degrees and the humidity is 84%. Please be reminded that the thunderstorm warning is in force. The news from RTHK. RTHK.
1: प्रोग्राम सुनिए हांगकांग की शाम अपने मेजबान आबिद अली बेग के साथ तावुन है होम अफेयर्स डिपार्टमेंट का
2: अस्सलाम वालेकुम इतवार की शाम है हांगकांग की शाम में हमारा और आपका एक बार फिर साथ है आरटीएच के रेडियो 3 पर यह महफिल सजती है आवाज खजाने के खूबसूरत मोतियों से हर इतवार की शाम सन 2004 से

ये गीत गा रहे थे आतिफ असलम। एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था। चूंकि सर्दी का दिन था इसलिए बादशाह का दरबार खुले मैदान में ही लगा हुआ था। सब खवास व आम सुबह की धूप में बैठे थे। बादशाह के तख्त के सामने एक मेज थी और उस पर कुछ कीमती अशिया रखी थी। वजीर, मुशीर, उमरा वगैरह सब दरबार में बैठे थे। बादशाह के खानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे। उसी वक्त एक शख्स आया और दरबार में दाखिले की इजाजत चाहिए। इजाजत मिल गई तो उसने कहा, मेरे पास दो अशिया हैं, मैं हर मुल्क के बादशाह के पास गया हूँ और अपनी अशिया को बादशाह के सामने रखता हूँ, पर कोई फर्क जान नहीं पाता, तमाम हार चुके हैं और मैं हमेशा कामरान और कामयाब होकर लौटता हूँ। अब आपके मुल्क में आया हूँ। बादशाह ने कहा, क्या अशिया हैं? तो उसने दोनों अशिया बादशाह के सामने मेज पर रख दी। वो दोनों अशिया देखने में बिल्कुल एक जैसी जसामत, यकसा रंग, यकसा चमक, गोया ये दोनों अशिया एक दूसरे की नकल महसूस होती थी। बादशाह ने कहा, ये दोनों अशिया तो बिल्कुल एक जैसी हैं। तो उस शख्स ने कहा, जी हाँ, दिखाई तो एक सी देती हैं लेकिन हैं मुख्तलिफ। इनमें से एक है बहुत कीमती हीरा और एक है शीशा। बज़ाहिर ये दोनों एक से हैं, कोई आज तक ये नहीं पहचान सका कि कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा। कोई जांच कर बताए कि इनमें से हीरा कौन सा है और कौन सा शीशा। अगर कोई सही पहचान गया और मैं हार गया तो ये कीमती हीरा आपका हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि अगर कोई पहचान नहीं पाया तो इस हीरे की जो कीमत है उतनी रकम आपको मुझे बतौर इनाम देना होगी। इसी तरह मैं कई ममालिक से जीत कर आया हूँ। बादशाह ने कहा, मैं तो नहीं पहचान सकता। वजीर और मुशीर बोले, हम भी जांच नहीं सकते क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। सबको गुमान था कि अब तो शिकस्त ही मुकद्दर है, लेकिन शिकस्त पर इनाम का मसला भी नहीं था क्योंकि बादशाह के पास बहुत दौलत थी। बादशाह की इज्जत का मसला था क्योंकि तमाम आलम में यह मशहूर था कि बादशाह और उसकी रियाया बहुत ज़हीन है और इस तरह उनकी सुबकी होती। कोई शख्स भी पहचान नहीं पा रहा था। आखिरकार थोड़ी सी हलचल हुई। एक नाबीना शख्स हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे बादशाह के पास ले चलो, मैंने तमाम बातें सुनी हैं और ये भी सुना है कि कोई पहचान नहीं पा रहा है, एक मौका मुझे भी दें। एक आदमी के सहारे वो बादशाह के पास पहुंचा। उसने बादशाह से दरख्वास्त की कि ऐसे तो मैं पैदाइशी नाबीना हूं लेकिन फिर भी मुझे एक मौका दिया जाए जिसमें एक बार अपनी जहानत को जांच सकूं और हो सकता है कि कामयाब भी हो जाऊं, और अगर कामयाब न भी हुआ तो वैसे भी आप तो हारे हुए हैं ही। बादशाह को महसूस हुआ कि इसे मौका देने में क्या हर्ज है। बादशाह ने कहा, ठीक है। उस नाबीना शख्स को दोनों चीजें छूने के लिए दे दी गई और पूछा गया, इसमें से कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा, यही आपको मालूम करना है। उस आदमी ने एक लम्हे में कह दिया कि ये हीरा है और ये शीशा। जो आदमी इतनी जगहों से जीत कर आया था वो बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, ठीक है, आपने सही पहचाना, आपको मुबारक हो, अपने वादे के मुताबिक अब ये हीरा बादशाह का हुआ। तमाम लोग बहुत हैरान हुए कि एक नाबीना शख्स ने कैसे जान लिया कि असल हीरा कौन सा है, और सब ने यही सवाल उस नाबीना शख्स से किया। उस नाबीना शख्स ने कहा कि सीधी सी बात है, धूप में हम सब बैठे हैं, मैंने दोनों को छूकर महसूस किया, जो ठंडा रहा वो हीरा, जो गर्म हो गया वो शीशा। इसी तरह जिंदगी में भी जो शख्स सख्त और मुश्किल हालात में गर्म हो जाए और हालात का सामना न कर सके वो शीशे की मानिंद है, और जो तमाम हालात में ठंडा रहे वो हीरे की मानिंद है।

आरजूए जान लिखूं या जाने आरजू, तू ही बता दे नाज से ईमाने आरजू। आंसू निकल रहे हैं तसव्वुर में बन के फूल, शादाब हो रहा है गुलिस्ताने आरजू। ईमानो जान निसार तेरी एक निगाह पर, तू जाने आरजू है तू ईमाने आरजू। मिस्रे फिराक कब तलक ए यूसुफ उम्मीद, रोता है तेरे हिजर में कनाने आरजू। होने को है तुलू सबाहे शबे विसाल, बुझने को है चरागे शबिस्ताने आरजू। एक वो के आरजुओं पे जीते हैं उम्र भर, एक हम कहें अभी से पशेमाने आरजू। आंखों से जुए खून है रवां, दिल है दाग दाग, देखे कोई बहारे गुलिस्ताने आरजू। दिल में निशाते रफ्ता की धुंधली सी याद है या शमे वसल है तहे दामाने आरजू। अख्तर को जिंदगी का भरोसा नहीं रहा जब से लुटा चुके

assistant, room attendant, cleaner, waiter, waitress, concrete mixer driver, tractor driver, truck driver, crane mounted trucks वगैरह शामिल हैं। ज्यादातर आसामियों के लिए महज थोड़ी बहुत चाइनीज जानना जरूरी है। एम्प्लॉयर मौके पर ही उम्मीदवारों का इंटरव्यू करेंगे। मुफ्त तर्जुमान की सहूलत भी मैसर होगी। अगर आप इस इवेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन के लिए कॉल कीजिए 2463-9322। मजीद तफसीलात के लिए देखिए www.jobs.gov.hk। हांगकांग की शाम की ये महफिल सजती है सन 2004 से हर इतवार की शाम 8 बजे की खबरों के फौरन बाद RTHK रेडियो 3 पर, जिसे पेश करने में तआवुन किया है होम अफेयर्स डिपार्टमेंट ने। हमारी नशियात आप इंटरनेट पर लाइव या गुज़िश्ता एक साल के प्रोग्राम आर्काइव में भी सुन सकते हैं। देखिए RTHK रेडियो 3 की वेबसाइट। स्मार्टफोन पर हांगकांग की शाम सुनने के लिए डाउनलोड कीजिए RTHK ऑन द गो नामी ऐप। आज की इस महफिल से अपने मेजबान आबिद अली बेग को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आइंदा इतवार फिर मुलाकात होगी। शब बखैर और अल्लाह हाफिज।